0: Funkaham.
1: Funkaham.
0: Akas bani agor tola lam sugote khaka ham ya fara hoy khok khnai to nai jot luk rokno tini ni hainu khorom bando tini kok te sang tal kran tal ni salchi chalmani chebirira thamchi ba tibra bisi metal ni sal thamchi sa salmari nei sai ni chidok ingraji bisi khnara jagai tongo meter nera thamchi to poyan mrei megahertz eba sasai nera dokti joko kilohertz tai sarasa poyan mrei megahertz baksa khlai e hainu kharan aw khlai jagai tongo fadinga sing hainu kharang pulai na khanai na halai na kokaham खुको देखे जलिमा हाम्रो फिया ककबराखे थामसि तुमरो सियान गनांग बरो ककसाखे सिमंग न साओ फिया बुतुवाखे कक नांगिया साओ सुब्रायुनि मकल बेबाक नन नाखलाय तंग काहाम बाय हामिया बाय बेबाक नन नाखलाय तंग कक संगले मथांनाय बुफांसे तामुखे कक सित्राखे बखानो सबायो बुतो आले बुफानी खराइमा न खनाया फिया खराइमा रक्न खनजोकानेखे खुसकेना बरक सयरकनिखे रांगसा दिक्सा कुपलुंग दङ तामखे बरक हामिया रक्नि आजिमं बायखे दफानि बागैसे जोंजाल सखखायो सिनानि खुगखे एलमनो बिरो बुतो आरकनि बखाव सिमुसेखरै बरक हामिया रक राथारै बारकमानो सुब्रायं सेलेंजागो फिया बरक कहामरक सुरिमानखे बका फुरजागो सुब्रायं बरक हामिरकनि लामानो सेलेंजागो फिया सयते कहाम सामु खलायना बागै सिगांगै थांनाय रकनखे हामजागो सय लामानो याकारनाय बरक ब पांजालैन माजरा माचानाय फिया खरायमानो खनायाखे ब माथैनाय सुब्रायंनि मकलो गथिरकनि हाबा फां फांसे हाके ब बरकनि बखारकनो बसकसे सायमानो बुइनो मुनिराय रक खरायजाकनो हामजागो बरक सिनानि थानिया बखा कसरां हनखे मखांब गचंगो तामखे बखा हामियाखे मगजाकंगो सियान गनां रखे सरंगना नायो तामखे वानसुकमा ग्रै खे बुतुवा तमुंगसे जाओ हाइदिन गासो जराजों ककाहाम खरायना हालाखे गाथा बाइबेलनि
1: औ हाइनि खरां पान्दाव जों दाबो खनालायनो लाइथांजों बिसिरखौ एबा दिनि निसालनो जों तामनि फाखै मुइथु खलायलाय दं आबनुरुगै ककथायसे थायनै दिनि थामथिसा मे दिनि हायंगुनाङै फेक जाखनाय मानै चामुंग नमुंग करी खाई तंगनानी

रेगनाइ चामथे गानी नाइ कतको खुमाला खाजु व सुरंग काटकाहंगे बल बसे नाइ थक आबुनि बागिनो सैनाइ गोरों रग बोरै रं रगैनाय गोबां मानो सैमं रग सैग्लांखा नाइथक मुनो दैनाय औ दाखुक बुखुक अजरान रग चिनि बोरै रंनो बान्धाव होखनाय दंबायो चिनि बोरै रं रगैनाय गोबां माकक सारा सपन्त

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से

0: कम होगा।
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
3: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
5: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे। जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी

0: बंद कर दिया, अरे भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है

0: वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का

रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400

1500 साल पुराने ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें

डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले

0: 100 meter race eba 100 meter khachikmu salini bisinguno jalarokni 100 meter khachikmungo national record whiteham sabaika je athletes thunkrung a record sabaika borokunkha gurinder veer singh tai animesh kojur ang wansuka ek hepni monkey bat pandawa borok bai kok salainai hanai animesh ji खुलुमका गुरिंदर वीर ननबहाइनो खुलुमका सत श्री काल
1: खुलुमका सर खुलुमका सर
0: हाइके ताखुक नरक बेलाइनो काहाम काइसा एचीवमेंट खलाइ फुनुका नरक खरगनै ओसा सामुंगनो खलाइ फुनुका जों रसामुंगो ओराम ओराम ननुगो खरगनैके रसापानि फिया ताबुक जोंनुका चैलेंजनि थंखलाओबो जर्सा जेथनी खरक्सा कैसा चैलेंज खलायो ते खरक्सा अबनो यासग अबनी यागुलो पुइलानी बरग तेब कत चैलेंज याफरी रो अब कुबिनो कैसा बेलाय वानामा सिंसा थंगमंगई बासाखा आंखा खलायो मन की बात खनाई तंगनाई नरक खरकनी बाय सिनी लाइथुन ताई नरकनी अथुमुंगनि लामनतै सायमानथों आंनायो नरक जे वानामा सिंसा एचीवमेंट खलाय फुनुका अबनतै लुक्रक तैब काहामके सायमानथों
1: खुलुमखा सार आनि मुं अनिमेश कुजुर आं 200 मिटार टाइ 400 मिटार कायनो नेशनल रेकर्ड सनामखा ताइ आनि नक छत्तीसगढ़ सार ताबुक आं जुदा जुदा थुंमुंनि बाटैमुङो उरिसा हास्तिनि ओंगै थोङै दङो थांनाय बिसिउ आं एसियान गेम्स तै वर्ल्ड इउनिभार्सिटि गेम कानियन' मेडेल एबा सकाट मानखा 2021 बिसिउ स्कुलनि सिमि ग्रेजुएसन पाइमानि उलन' आं एथलेटिक्स हापार' आनि याप्रि बारक मुंसेंगो आं आम्बिकापुर सैनिक रोंनकनि गोजाम सोरोंनाय दंमानि आबुनि साय सिगां आं फुटबल थोंमानि कोविड 19 कप्रब मुंनि जरा आनि माफासं आनो किसा जरा रोमाबाय आं आ जराव' खासिगनानि तै थोंनानि बागै फाटार' अंखर' कोविडनि कप्रब मुं जेफ्रु किसा हलिखा आफ्रु फुटबल टीमनि आनि किसिंसं आनो साखा हास्तिव' एथलेटिक्सनि स्टेट मिट ओंनाय नों आर' पार्टिसिपेट खालायदि तै आंबो पार्टिसिपेट खालायखा तै आं सायमानिया आब' नेशनेल लेभेल सिलेक्सन नै आं आरो सिमिन' नेशनेलनि बागै सिलेक्ट ओङो तै ताबुक आं हायुं गोनाङै भारत हाखतनि ओङै रिप्रेजेन्ट खालाय दङ
0: तै गुरिंदर वीर निनि कक्ष बाहाय
1: खुलुमखा सार आनि मुं गुरिंदर वीर तै आं खरक्सा इंडिया नेभिनि पेटि अफिसार तै आं भारत हानि जतनि सिलाय कद स्प्रिन्टार आं 100 मिटारो 10.09 बाय नेशनल रेकर्ड सिनामखा भारत हाव आंनो पुला 10.1 सेकेंडनि कासुजाग्न लाइमानो तै आं सायतगै दङ ट्रेक तै आनि सेंक्राकनि खाकि अ कायनै न हा आमानि बागै याफारजाक आनि बाबु तै थागुबो हायन थोंमुंबाय गोदालजाक दंमानि सिनि भारत हुकुमनि रायजा कायसा दङ जेफ्रु जेसाब तेर ओंखे रमदि दिवालि हायाखे बिसिकताल अ जराव जों सिनि नक्सा नक आरि साफ सुथ्रा खालायो आंखे बाबुनि ट्रफि तै बिनि मेडेल रग्न साफ सुथ्रा खालायो अ सामुं ताङै आं बेलाय खेन' खाकजांमा मान' तै आनि बोखान' बेलाय खेन' तंथग्रुवो जेफ्रु आं जेसाब कायसा ट्रफिन' साफ सुथ्रा खालायो आफ्रु आं बाबुनो सोङो बाबु नों अ ट्रफि बर' जिदिखा अ मेडेल बर'मान अ मांपलि बर' तिसामानि आफ्रु ब बिनि कथमा रग्न' आन' सायखोनार' आं अमाहाय जागाव थोंनो थांमानि हायाखे आं अ नेशनेल मेडेल अर जिदिखा हायाखेबा आं अ इभेन्ट' बदलनि कोप्लाय तैफां ओंखा अ कक खोनावै आं बाबुनो साखा आंबो थोंमुंनो हामजागौ तै थोंमानि बिसिंतै बायथांनि याखुङो बासाना मुसुगो बाबु सालब्रुङो फुङो खासिंना थाङो आं बनो कयखा बिनि लगि तैनानि बागै ब आन' ब बाय बाक्सा लांना सेंखा तै बिनि थोंमुंनि लांमाव' जे सोरोंमानि स्किल रग्न' आन' फोरोंना सेंखा आबो हायखेन' थोंमुंनि फायसिं आनि खा वार मुं तैब' बासावै फायखा आं उसेन बल्टनि वर्ल्ड रेकर्ड

0: आपने हिंबा आ थाईनी मिशिंग वार्म आप खलाइन्या बागै बेलाइनो काहाम तंगमानी अब हाइके जों खरक्साते खरक्सानो चुबालायखा जों जेफ्रु खरक्साते खरक्सानो चुबालायखा आफ्रु ताइ खरक्सानी जासामुं ओंगो ताइ सिनिबो जासामुं ओंगो आबुनि बागिनो किचिं नांगो आव सार जों जेफ्रु ट्रेकनि फाटारो तंगो कम्पिटिसननि फाटारो तंगो आफ्रु जों किचिं फिया जेफ्रु जों ट्रेको याकुं बेरावो आफ्रो जों कम्पिटिटर ओङै थाङो आ जरानो सिनि वान सकमुं सोलायजाक थाङो आं बिनि सोलाय दै खासिगनाय आं बनो उक्लुग तनिनाय
1: नायदि नरक जे कम्पिटिसनाव पार्टिसिपेट खोलायखा बिनि नाहार मुं ओंखा बसुंनि बरमनो कुसुग तिसानानि थिनांगो हाक्थनो कुसुग तिसानानि तै अ इबिनि बिसिंति कुबुइनो कायसा गोताल वानसुमुं आसायखा आं खाबाय पैथु खालायो नरकनि अ स्पोर्ट्समेन स्प्रिट कम्पिटिसन बो खरक्साते खरक्सानि चेलेन्जनु सोखाङै थांमानानि चायतुमुं ताय अबबाय बाक्सा खरक्साते खरक्सानु चुबामुं जतन बेलायनो वानामा सिंसा नरक बेलायनो वानामा सिंसा सामुं खलायफुनुका आनि फाइसिंतै आं नरक खरक्नैनो आनि खाबाय खाका हामताय बेलाय हामबाय याफारो आं खा खुप्लुं पैतु खलायो नरक बसुंनि बागै बरम बांग्रवानो आं खाबाय पैतु खायो अबाहायखेन नरक साक्थ्रै एक्सारसाइज खालायदि नरकनि तालिखाव कतर चासामुं सैजाक दङ नरक खरंनैनि बागै तेवस्या हायनहाय बेलाय बेलाय खाकाहाम याफारो
0: बेलाय हामबाय सार नन बेलाय हामबाय
1: नरकनो बेलाय बेलाय हामबाय आनि खाफांनि हाक्थनि लुकरक इ जराव हाक्थनि जुदा जुदा थायो बेलायखेनो तुंमानि नुगजाखा बेलाय सातुं नबार कुतुं अमहाय जराव बायथांनो नायखलना बेलायनो नाखुगौ ओराम ओराम तैनोंदि सातुंग नखनानि नांखे किसा नायसमै नखरदि अबनो नाहारै हाफांनि फाइसिंति जुदा जुदा डिपार्टमेन्टस जे गाइडलाइन्स हाइकेबा थलजाक रायदा साख्लायखा अबनो मैतु नारगदि किसिंसं चिनि हाकतर कुतुंनि कातिना बागै गोबांमा लाम चिनि गान्धि नगतंग नरक नुखना तुंबालानि जरव चिनि गान्धि नगनि चामुं नोंमंबो सोलायजागै थांगो कायसा कुसु थायोखे हानि गलानि दै नोंजागो बाक्सा थायोखे दय आसुग रोजागो तै बाक्सा थायोखे थाइसुग मोरै बिनि सरबत नोंजागो अमा हायखेनो चेंगोचिनि बायथांनि तुंबला मलनि दै गोसां नोंमं नरक जतन अबनो सायमानो तै अबबाय नरक जतन सिनिजा तुमुंन उत्तर भारत थांखे गोबांमा थायो आमपाना नुगैमानाय अब थासु गोखैनि बाहायबाय बाक्सा कुतुं जारव तुंमानि कातिरव पान्जाबतै हारेया नाव थांखे नुखनाय लस्सी कतर कतर ग्लास लस्सी राजस्थान ताय गुजरात नुखनाय सस जत चामुंनि लगिसन ओङै थांगो तै बिहार झारखण्ड तै उत्तर सालकाव बेलनि सरबत अबनि कक्ट तामसानानि अगबुफुंग फानबो मानो कंकन तै गोआव काकुम सरबत तै साउथ भारत थांखे पान्नाकाम निरमुर तै सम्बरम उड़ीसाव नुगजाग बेलेपान्ना अबरक नोंजांनाय दैसिमिया अम ओंखा भारतनि जुदा जुदा आमचेनि जुदा जुदा हुकुमो बाय गदालजाक तांबो तांग्रक अबनो कारिबो अबरकनि बिसिंतैनो कायसा भारत काहामकुर भारतनि वानसुमुं जनासाय फायो तै कायसा कक बेलायनो मैतो नारगदि अ तै गोसां गोबांकुंनो चिनि गान्तिनक तै चिनि हुकबानि सिमि सोनामजागौ अबरकनि बिसिंग मुंसाबो कतर ब्रेन्डिं गोरै फिया अबनि बिसिं हुइजाक दङ दाङाइमा दाङाइ

फानी सिमी लुकुरकनी खातिजाक सिमों आं नरक जतनो कयो तुंबलानी ओ जरव चिनी बायथांनी सनामजाक तै कसांगनो खातुंगुई नंगदे किसिंसों तुंबला मल फायखेनो जत नुखुंगनो कायसा ककनती कक सालाइजागै तंगो अबंखा थाइजौ थाइजौ कायसा जत लुकुरकनी ककलामनी थायिङै कासाका भारतनि अमहाय कासेबो नुखुं मांगला जाखानि तुंबला मल थाइसुंनतै मुंसाबो कक साजागिया जत आमचायो थाइसुंनि बिनि जुदा जुदा बुमुल तंगो बिनि जुदा जुदा बाहाय तै मतम कथक तंगो महाराष्ट्र तै कंकन आमचायो तंगो हाफुस गुजरात केसर अब जतनौ थाइसुंनि लांमा उत्तर प्रदेश दशाहरी काशिनी लेंग्रा साना थांकी काशिनी लेंग्रा थाइसु बिनि कासा जुदा तंगमुंग तंगो मुनमानी यागलबो बिनि रंथाय सलाइजाक थांग्या कख्रांनो तंगो बिहार जारदालु बिनि बाहाय बेलायनो मतम हासाल तंतुतुइनो बिनि सिनिमुंग मानी मानो सुसा मालदा जत मुंबाइन लुकुरकनी खा करंजाक दक्षिण भारत थांके बेंगनपल्ली तुतापुरी नीलम मलगुरा तैयांग पश्चिम बंग फाके हिमसागर उड़ीसा तै आंध्र प्रदेश नि सुवर्ण रेखा ककथाइसाबाई साना थांके आमचाय सलाइजाकमानी लगी लगीनो थाइसुंनी गरन कथक बाहायबो सलाइजागै थांगो तै किसिंसं थाइसुंनो याफ्रिनि कामि आमसायनि बाहारै हायुंनि बाजारावबो थाङै सौगिक्या दिनै मनके बातनि बिसिंतै आं अहुबा खालायनाय ताखुक बुखुक संनो खा बलायना मोसंगो जेरग थाइसुंनो हुकबानि सामुं बाय बायथांनो गोदालै तनिखा हाखतुननि हुकबानि रांथं राग्रथानि नरकनि याफायनो बेलायनो बलायो नरकनि सामुंनो अबहायखोनो खलायतंदि किसिंसं तुंबलानि अजराव साना थांके रोंनग ततबु सुतिनो फिया आं अमहाय कायसा क्लासनि कक सावानो खोनाके नरक एडमिशन ओंना मुसुं जागानो किसिंसं वानसुंनायदि अमहाय कायसा स्कुल जेथानि चेरायरगबो फायो सिख्लारगबो फायो उमर चाखारगबो एडमिशन नाव जेथानि मुंसाबो फिस करै कतर कतर बिल्डिं करै मुंसा क्लासरूमबो करै जतनि साय खातुंमा कगुंखा अरनि क्लास ओंगो तैमा कसार किसिंसं अब कथमाया अब कायसा कुबुइ चायतुमुंसि केरालानि आलुबायानि साजि वालास श्रेलजि अमहायनो कायसा स्विमिं क्लाब खुलुगुइ तंखा ताबुकसुजरा सिबा सायनि गोबां लुखुरक अरतै यकना सोरोंखा साजिजि दिबां सराय रखनबो तै यकनानि फोरोंखा असाक्तर मुंनि उक्लग कायसा खा साजाखनाय ककबो हुजाक तंगो किसा बिसि सोखां रुंखुंसा फिलजागै रों सोरोंनाय रग थैका आपातिमुं साजि जिनो खानक गोलैसारेखा बवानसुका तुमुं चरायरग तैयकना रोंखे गोबांमा चरायरगनो लांमा आरि गालाखामु आरोनि सिमिनो चेंखा बिनि अ तांबोतां किसिंसं साजिवाला सेरेलजिनि लांमा सोंनो कायसा कथुक फोरोंमंग्रो बयनो चबानानि बागै गोबांमा रां पैसा नांगिया नांगौ कायसा खाबाय साक्थारमुंताय खारवै चायतोमुं अवानसुमुं रक्न तैयै खरकसा बरक साय साय लुकुरंनि लाखमनो सेलाय मानो आनि खाफांनि हाखतनि लुकुरक थांनाय किसासोग सालो आं इउरोपनि नेदारलेण्डो बेरायनानि सेब मानखा आं गोबांमा मिटिंआव मानजाखा आं बेरायमानि जराव अमहाय कायसा जरा

इजरावो नरगु नुखना हाक्टर गनांगै एस्ट्रोनॉमी क्लब नो लुकरग खातुंग जाखमानि बांगै नो तंखा कतर आउलेनि सिमी चिकन कामी जरा रंगनक निसिमी चेंगै गांथिनक जरा अबनतै हिमानि नुखजागै तंगो आं बेंगालुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी नि कखनो खनाका आरो अब्जर्वेशनल सेशन संसा जागो अमथा कामी आमसायो एस्ट्रोनॉमिनो लुकु खातुंग रुमानि बागै सामुंतांगै तंगो कंगोल मंडल मंगोई कैसा बदल दाम थामचिनी कैसा बेलाय खाबा जाजांनाय कोर्स चेंखा चालायसं आरो आथुकिरि जोंमानि अबबेलायनो जुदाकुक नुकमु एस्ट्रो केरला मुंगुई कैसा मथा नाइट अब्जर्वेशन केम ताय वार्कशप पान्दानो संसाव आरो सिख्ला चालायरो टेलिस्कोप सनामना ताय स्टार मेप बाहायके सामुंगो थेपा अबनो गोरोंगो राजकोटनि बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लाब गिरनि बलंनि सिमी कार्ड्सनि हासिंखर जरा गोबांमा एस्ट्रोनॉमी पान्दा जुगालजाखा ज्योतिर्विद्या परिसंस्थाबो एस्ट्रोनॉमीनि जतनि कसा मथानि बिसिंग कायसा आरो अब्जर्वेशनल फेसिलिटीस बाय बाक्सा बिजाब बिजाबखर ताय टेलिस्कोप लाइब्रेरीनि सेबसाब दंगो आं आई एस ए एस हिनो तैबो खुरसाना मुसुंगो अब कायसा स्टुडेन्ट लेट नेशन वाइड नेटवर्क बड़ एस्ट्रोनॉमी ताय एस्ट्रोफिजिक्स क्लाब नि बिसिंग मानजुओ किसिंसं बायथांनि हबी नि बागै जरा तिखलायनानि ताय तामख्लाय एके कोताल सोरोंगै तंनानि बेलायनो नांगौ आं सिख्ला रखनो कयनानि मुसुंगो नरक जेसा एस्ट्रोनॉमी क्लाब बाय जेसा के फानो गोरों दि ताय अ लेंलामानि जराव जेसा प्लेनेटरियम बो थांगै जेसा के फानो नायदि किसिंसं मन की बात पानानो जे बर रग टिभिओ नायो आं बरखनो सानाय कायसा भिडिओ जेसा के फानो नायदि अ भिडिओ नो तै थानाय साल रग बेलाय खेनो सालाय जाखा आरो किसासो बरक बेलाय खालगै बेलाय कायसमै गंगानि मासा डल्फिनो मथांनानि साखथालायखा नरक अकक खनाय मलांसावानो आ साखथार मुं दामचिथाम नांखा पायथागो अ डल्फिन थाबो थांखा किसिंसं आरो जतनि कतर याकतर्मा ओंखा भारतनि पुइला गंगा डल्फिन रेस्क्यु एम्बुलेन्सनि अपातिमुं उत्तर प्रदेशनि आरो मासा गंगा डल्फिन झाबाराव कसाय तंमानि अबति जराव खामा गंगा तांबोथांनि बिसिंतै अ सोनाम जाखमानि अ एम्बुलेन्सनि बागै खाथारि जाखनाय ओङै कासाखा उल बेलाय कायसमै बन अ कबुल जाखनि कारिखा बिनि साग आमजों नायजाखा बिनि साग आमजों नायमानि यागुल बन तैलाम काहाम फियगै रहरखा बाबायसा तै नायखांकै कायसा लांमा तेहैसा बिनि नग किफि मांखा किसिंसं अ डल्फिन रेस्क्यु एम्बुलेन्स बेलायखेन नांमानि अम ओंखा हिमि तंनाय कायसा हस्पिटाल एबा साखामनक हायखे सोनामजाग अर अ डल्फिनो जायखे तनमाना तैखे सोनामजाग अक्सिजेननि सेबबो तंगो काहाम स्ट्रेचारबो तंगो नायखानि खलायजाखनाय मानैरगबो तंगो तुमुं डल्फिन रग दुखुमानखे किनार फायो एबा मुंसासो थायो गोसाउि तंखे बरखनो लगि लगिनो सबाय मानो किसिंसं जों जेफ्र गंगा डल्फिनो मोथांगो आफ्रोजों कायसा मालमातानो सिमि मोथांया जों गंगानि गोबांमा मालमातानोबो मोथांमा खालायो दैमानि बेबाग लांमानि सिस्टेमनो मोथांमा खालायो तै फायनाय कोताल आसाय संनि बागै काहाम तंखर सोनामै तंगो आनि खाफांनि हाक्तनि लुकुराव नरकनि बिसिंगो

दैमा पुख्रि हायेखेबा कवा रग बै गोरोंजा गोबांमा मुइतु रग तंगना बाक्सानि पुख्रिव तै यकमानि मुइतु तंगना बाक्सानि बा पुख्रि किनार बायाब रग बै कथा लाइमानि हिमलाइमानि ककनु मुइतु तंगना बाक्सा बा आहानि बाहायनो मुइतु तंगना चेरायफुरनि अमहाय कक रग बोखाव मुइतु ओंनो तंफ्लायो किचिंसं अमहाय मुइतुनि कक रग्न गोथां तना बागै खा बासानाय खरगसा उत्तर प्रदेशनि बस्ति मेलानि सोखांनि फायख्या बस्तिनि आकाश गुप्ता बायथांनि कामिनि दैमानुगै बेलाय खा दुख नांजाग तंमानि तामनि हिंखे जे दैमा ब चेरायफ्रु साफसुत्रा ते गोथार नुमानि जराबाय बाक्सा आ दैमाव प्लास्टिक जमखा हामिया सित्रा मानै बांग्रगै तंमानि बरम गोनां आकाश खाव' चंगैनाखा कमप्लेन खालाया कायसा कोताल सामुं चेंनाय कमप्लेन या चेंमुंनि मन्त्र से खालायसो ब बिनि पाल रक्न लगि तैखा जाल तंग' तै लगिव उरासिमिन' तंग' तै तंग' खाव' फान कतर स्लाइमानि वानसुमुं असिखला रक दैमा व अंखलायै ते दैनि हामिया मानै रक्न तिसालायो दैनि प्लास्टिक रक तिसालायो सालब्रुमन बाचि निसिमि दक्षि किलोमिटार दैनि हामिया मानै रक तिसालायो दरग दरग मनोरमा दैमा साब ओंग्रुरुखा गंगानि लुकरकनि सकल्ब अ सामुंग सतनजाखा लुकरकनि बिसिंग साबसत्रा नतै खा बासालायमानि नुकजाखा किचिंसं अमाहायनो कायसा खा बासाजोंनाय कक गवाओबो ओंखा गवानि बालाकृष्ण आरियाजि खरगसा रिटायार टीचार फिया हदानि बागै सामुं तांनानि बिनि मुचुमुं ताबुबो आगिन हायनो तंख' मुदि तालाब आमचायो तैनि जोंजालन' तै ब बेलायनो वानाजाग ब जोंजाल सकमना बागै सामुं चेंखा बालाकृष्ण पाइपलाइन बनानि सामुं कतन्न खलायखा ब गोबां मानग पाइपलाइन तै तै तुनसाय रैखा जे नुखुंग तैनो तै सालब्रुमन चबा खलायना नांगौ बरकनि बागै बेलाय गाहाम ओंसुखा किसिंसं थानाय तालो आं कायसा कक गाहामखे सायमानखा अब मन की बात बायबो गोरोंजाग अबनि बागै दिने आं नरक बायबो शेयर खालायानों तामिलनाडुनि नागेर कयल खरगसा टीचार बाय आं मालायखा आंबो बाय बिसि थाबसि सोखां मालायमानि आं कक साय दंग' गिरिजा आमानि आंबो बाय मालायफुरु किसासो सिख्ला रगबो बिनि लगि तंमानि किचिंसं गिरिजा आम्माजि कायचिबासो रोंनक सालुगै दंग' अबनि बिसिं चेन्नाइनि जयगोपाल गरदिया हिन्दु बिद्यालया कायसा दंग' बिनि हानु हामजाक मानि सामुं बाय हाक्टनि लुकरक खा बासाव ब मन की बातनि बिसिंतै खा बासावै हाक्टनि सेंख्राग रगनि बागै सामुं तांनानि खाचंग' अबनि बागै ब बिनि बेबा रोंनकनि सोंनाय रक्न खाथुं रोखा ब चेराय रक्नु साखा हाक्टनि फान गोनां सेंख्राग रगनि बागै सालो रां खक्सा याफारनानि बिसिव जत सोरोंनाय रकनि बोखाक्ति खक थामरा दक्षिबा रां जमकजाखनाय अ किसा किसाखे याफारमा बाय चल्लिस लाख रां जमखा गिरिजा आमा अ रांनि चेक आनो याफारखा ब बाय कक सालाय आं सायमानखा आमा भारतनि बागै बिनि याफारमुं बेलाय कतर थानाय बिसिव चेन्नाइनि पुइला हिन्दु बिद्यालया बिसि बाचि पुंमानि हाक्टनि रोंतै हुकुमु मुकुमुनि बरमन' बोसखांग' आगुग्रै दंग' अ रोंनक नेटवार्कनि सामुं बेलायखे बलायजाखनाय आं अ सामुं बाय
गदालजाक जो तो लो।

아니 가방이 다 어디 북성 아슬저라 쌩 진이 뭐라 뭔가 남 프라단 문드리니 몬키 바트 카나라이카 에엠데 에펨데 카이네티노 한게 다북 진이 उज्जैन तेफिनी ककबरक पांदाओ किबली फैपी का जतनो ने दीपर कहाम ते तिनी मन की बार खनामानी यागुलो तिनी नौश हालो रिसापुं खनालाई ने ते किसी चा आं लाइव मनी कथमा कसार कसारो किसा सा सानाई रिसापुं को बंगो खनालाई ने आं तिने जिनी पाई थाक राजानी बिनी आसे मनी शाल रोग बताम ताम खलाईलांखा आबरो किसी चा नंगनो खुसाई छानाई सिंग मुझु खलाईना नंगो जिनी बुवाग्रा चीनी बागी टाम खाई कलांग ठंगा ते बुवा हैरोक बिने बुंग टोंग मनी अवनी बागी बिने कोकरनो किसी शा अं खुर्तना मुसुंगो नॉनी बस कांगो महाराजा बीर बुकम किशोर मणिक बो 1923 सालो चीनी हास्ते त्रिप्रणी राजा हनी चंगजाखा बिनी बाबा तोमनी महाराजा वीरेंद्र कुशुर दब बर्मा बो जंग जतन सेमनो कताल जेचिनी ती प्रश्न मन्यो बिनी या कोंग मन तोंग नै नवन बगी बो जतन बनो चिनी थिनांगनी कछा लांगमा ते चिनी ती प्रश्न नि बगी जे सामुं खाइले मने आबरुनो मसा संकिसा मुतुमा खलाय बो 1946 विश्व त्रिपुरा पुल्या डिग्री कॉलेज सनाम का महाराजा वीर विक्रम कॉलेज एमबीबी कॉलेज संग जतन तक पूरी लयो चिन्ह कबांग मा अकरा सागर बहनो और पूरी हुई था का अबुन बो चिन्ह आगोट लदो लेने होते नाइट हो कहाम खलाइन बगे मास्टर प्लान खलाई का वो जगह 1942 विश्व ते अबुन करीबो बो ताबुक निजे चिन्ह वीर कुम खला अबुन वहाँ बो बो सनाम का 1942 विश्व चीनी ती प्रसारण बगे हम कराने बगे बोनो पुला चीनी बोलोंग निजे राजा बोलोंग नि हा अब चीन भाई खाजाक प्रिजाब टोंगनान बगे बो सामुं खलाइलांग माने कग्रब सिंग साइमानो बो 1900

रचामुंग खाना जे खाना जे कॉक चलाए चलाए जे बाइक के जरा से काम वाला इतना का साइज़ माले आती किसे जरा तंग को टे 30 मिनट्स टे काइब्री काइबरोग रचामुंग खाना लेने तम हन अनेक खापन इधर आउट बुक्सों अंके टाबों के किसा कताल बहक खाब ले चिनाई तम हन नॉक निभागई किसा चिनी यू डोंग निभागी टाबुक बोई रचामुंग कतालो खाना मुंगजाई चौंगना किसा कताल कुकनो ताक टांग चिनाई हे नीन भागी ते टांग सरसामुंग

0: वाना खा दू मल जुदा हमले बेराम रोग जुदा जोनों सब कोई भी हो हम उस निया बेराम रो चीन ओम बा हम सही बकतर बा इन्हें बहुत बंगने चा यकुम माय बो फायन मोकलुंग या बो फायन ताई जा साना कोक तंग सी आप तो निबुमा दाती मामी रोक संग दे
1: आको संगन साल से पाय खुब ला ताई जीतनी तीनी बुन से बारा आ डॉक्टर कोतर फायन हमार बा आग लिन से फायन नहीं खना बुला बो सब वजह न मौज मौज साल सुगन आनी सामुल पागिरा ना नखला तो ने मुसु बोला सुरखा मिस्की नखला पोतक पुंखिरो गुपुलों ताई मुताई ना था यंग सुका
0: आने सर सियर में चंगु निदे आरो सुगंग सोगिया के सुसुगिया
1: बा नंथा सुसुगिया हजा दुमा खपसे कुसुबी चेंगसिना

0: लुकुरा खुलुमका मन की बात नि बिसिंती तेवाइसा नरक बाय गोरोंगै मानमा बाय आं बेलायखनो खातुंजाक हाक्तनि जुदा जुदा आमचाइनि चिनि लुकुरक बसंताय दफनि बागै अमाय सामुंका हाम खलाय दङ जे रखनो खनाखे गुबुनो चिनि खा बासै फायो दिनिनि पान्दा चेंद्रबन आं थोंमुंग चिनि हाक्तरो चासामुंनि ककथुम खुरचावानें सालकिसा सेखां जारखाननि रांचीव नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कम्पिटिशन अंका आरो उंगिया हनफानो हाक्तनि जुदा जुदा थाइनि खरक चारा एथलेटिक्स रक मानजाखा आजारो कायबिरै जुदा जुदा इवेनो कायबिरै नेशनल रेकर्ड अंका गुरिंदर बीर सिंह विशाल टीके ताय तेजसिन शंकर देव मीना ताय कुलदीप कुमार औ थंक्रंग रग जुदा जुदा इवेनो कताल कताल रेकर्ड सुनामका आं जतनि साय सेकां बरकनो खाका हामताय हामबाय याफारो किचिं सं हाक्तर गनाङै जे ककनो तुइ ताबुक ककलाम अङै दङ अबंखा 100 मिटार रेस एबा सारा मिटार खाचिकमु सालनिनि बिसिंगनो चलारकनि 100 मिटार खाचिकमुंग नेशनल रेकर्ड वाइथम सबायका जे एथलेट्स थंकरुंग और रेकर्ड सबायखा बरगुंखा गुरिंदर बीर सिंह ताय अनिमेश कोजोर आं वानसुखा इ खेपनी मन की बात पांडव बरग बाय कक सालायनाय होनै अनिमेश जी खुलुमका गुरिंदर बीर ननबहायनो खुलुमका सत श्री काल
1: खुलुमखा सार
0: हाइके ताखुक नरक बेलायनो काहाम कायसा एचिभमेन्ट खालायफुनुका नरक खरगनै असा सामुंनो खालायफुनुका जों रोसामुंग उराम उरामनो नुगौ खरगनैखे रोसाफानि फिया ताबुक जों नुखा चेलेन्जनि थोंखलावबो जर्सा जेथानि खरगसा कायसा चेलेन्ज खालायो ते खरगसा अबनो याजागो अबनि यागुल पुइलानि बरग तेबो कत चेलेन्ज याफरै रो अब कबिनो कायसा बेलाय वानामा सिंसा थोंमुङै बासाखा आंखा खालायो मन की बात खनाय तंनाय नरक खरकनै बाय सिनि लाइथुन ताय नरकनि अथोंमुंनि लामनतै सायमानथों आंनायो नरक जे वानामा सिंसा एचिभमेन्ट खालायफुनुखा अबनतै लुक्रक तैबो काहामखे सायमानथुन
1: खुलुमखा सार आंनि मुं अनिमेश कुजुर आं 200 मिटार ताय 400 मिटार कायनियनो नेशनल रेकर्ड सोनामखा ताय आंनि नक छत्तीसगढ़ सार ताबुक आं जुदा जुदा थोंमुंनि बाथाय मुङ उड़ीसा हास्तिनि ओङै थोङै दङ थांनाय बिसिव आं एसियान गेम्स ताय वर्ल्ड इउनिभार्सिटी गेम कायनियनो मेडेल एबा सकाट मानखा 2021 बिसिव स्कुलनि सिमि ग्रेजुएसन पाइमानि उलनो आं एथलेटिक्स हाफारो आंनि याप्रि बारक मुंसेंगो आं अम्बिकापुर सैनिक रोंनकनि गोजाम सोरोंनाय दंमानि आबुनि साय सिगां आं फुटबल थोंमानि कोविड 19 कप्रब मुंनि जरा आनि माफासं आनकिसा जरा रोमाबाय आं आ जराव खासिगनानि ताय थोंनानि बागै फाटारो अंखरो कोविडनि कप्रब मुं जेफ्रु किसा हलिखा आफ्रु फुटबल टीमनि आनि किसिंसं आनो साखा हास्तिव एथलेटिक्सनि स्टेट मिट नों आरो पार्टिसिपेट खालायदि ताय आंबो पार्टिसिपेट खालायखा

0: आं सैमानिया अब नेशनल लेवल सिलेक्शन नै आं आरो सिमिन नेशनल नि बागे सिलेक्ट इंगो ताय ताबुक आं हायुं गनाङै भारत हाखतरि इंगै रिप्रेजेंट खलाय दङ
1: ताय गुरिंदर बीर निनि कक्ष बाहाय
0: खुलुमखा सार आनि मुं गुरिंदर बीर ताय आं खरक्सा इंडिया नेवी नि पेटी अफिसार ताय आं भारत हानि जतनि सिलाय कद स्प्रिंटार आं 100 मिटार 10.09 बाय नेशनल रेकर्ड सिनामका भारत हाव आंनो पुला 10.1 सेकेंड नि का सुजाग न लाय मानो ताय आं सायतगि दङ ट्रेक ताय आनि सेंक्राग नि खाकि ओ कायनै न हा आमानि बागे याफारजाक आनि बाबुताय थागुबो हायनो थोंमुं बाय गदालजाक दंमानि सिनि भारत हुकुमनि रायजा कायसा दङ जेफ्रु जेसबतेर इंखे रमदि दिवाली हायाखे बिसिकताल ओ जराव जों सिनि नक्सानक आरि साफसुत्रा खालायो आंखे बाबुनि ट्रफि ताय बिनि मेडेल दं साफसुत्रा खालायो ओ सामुं तांगै आं बेलाय खेनो खाकचांमा मानो ताय आनि बोखानो बेलाय खेनो तंथग्रुओ जेफ्रु आं जेसब कायसा ट्रफि न साफसुत्रा खालायो आफ्रु आं बाबुनो सोङो बाबु नों ओ ट्रफि बर' जिदिखा ओ मेडेल बरमान ओ मांगप्लि बर' तिसामानि आफ्रु ब बिनि कथमारकनो आनो सायखोनारो आं ओ माहाय जागाव थोंनो थांमानि हायाखे आं ओ नेशनेल मेडेल अर जिदिखा हायाखेबा आं ओ इभेन्ट बदलनि खोप्लाय तिफां ओंखा ओ क खोनावै आं बाबुनो साखा आंबो थोंमुंनो हामजागौ ताय थोंमानि बिसिंतै बायथांनि याखुङो बासाना मुसुङो बाबु सालब्रुङो फुङो खासिंना थाङो आं बनो कयखा बिनि लगि तैनानि बागै ब आनो ब बायबाक्सा लांना सेंखा ताय बिनि थोंमुंनि लांमाव जे सोरोंमानि स्किल रग्न आनो फोरोंना सेंखा आबो हायखेनो थोंमुंनि फायसिं आनि खा वार मुं तैबो बासावै फायखा आं उसेन बल्टनि वर्ल्ड रेकर्ड ब नुखा अबबाय कायसा गोरोंजाक बेलाय मोनै कथ कथमाबो दङ आं टिभि नायै दंफ्रु आफ्रु आमा टिभि मोथागै सावो ताबुक परिना जरासे परिनानै थांदि आं आफ्रु सावो द हायखे आनो टिभि नायना रिया आमाहाय सालसा जराफायानो आफ्रु नों आनो टिभि बिसिङनो नायतुगानो ताय आनि फायसिं यासि सुरै सावानो इक' नासिकदि बुरिंदर खासिगै दंखा जेफ्रु आमा टिभिव आनो खासिगमानि नखा आफ्रु गब्बैन आनि खाव खाकचांमा मानखा
1: बा बेलाय खोनाथक निनि कथमा
0: आव कबिन सार जों कायसा मिडल क्लास नुखुंनि बरक आबनो कारिब आनि बाबु ब ब जरा कायसाव भलिबल थोंमानि फिया नुखुंनि केबेंमुं बाय बिनि अ थोंमुंनो याकारि मारखा बिनि अ इमां इमां न तंग्रगै थांखा बिनि आ इमांनि मांप्लि आनि बिसिङन नुगदानि सेंखा ओ वानसुक मुंबाय आनि साजला सालसा ओ इमांन मुख थां खालायनाय होनै आं बाबुबाय जरा मानखे गोबां मानो कक सालायो ताय मिल्खा सिं बसुक साखथारै लय खेलाय आ कथमारक आं खाबाय खेनावो आं बाबुनो सावो सालसा आंबो निनि इमांन मुख थां खालायनाय होनै बाबु बिनि किफिल मुंग सावो इमांतो हायन मुख थां इया अबनि बागै नांगौ बेलाय कथुक साखथार मुं गोनां लय नों ओ लयन जायतगै लांना नांनाय मिल्खा सिंजि बेलाय साखथारै लय खालायमा बाय थैब गोबाना नांखा ताय ब बेलाय सातं गोप्राबो खासिगौ ब साफुंन ट्रेनिं खालायो अ कथमा ताय अ कक मुंरक आनो बेलाय खाबासारखा आनि बाबु आनो खासिगनानि बागै बेलाय खाबासारखा हाखतरि बागै खासिगना बागै मेडेल मानना बागै ताय बसंनि बरमन तुबुना बागै बिनि अ बाबैसा ब दङ जेफ्रु आं इभेन्ट 100 मिटार स्प्रिन्ट सायनाहारखा आफ्रु जतन आनो साखा 100 मिटार ता खासिगदि होनै अबसिनि भारतीय रगनि बागै चुगजाग इभेन्टिया भारतनि लुकरगनि तरमा लगमा बाय 100 मिटार स्प्रिन्टनि बागै चुगलाग फिया आनि बाबु ताय आं जत जरावन सावो गुरिंदर जेफ्रु आबनो सायनाहारखा आरोनि सिमित उक्लुक उसलुनानि ककनो कासाया जे रग सावो आबो जों मानग्ला खोनै आबनन आं खालाय फनुगना मुजुङो आबनो आं खालायि फनुगनाय नों न अबो खालायि फनुग माननाय नन पुयतु दङ बाबु जेफ्रु आनो अ कक पुयतु कुप्लुंनि कक सावो आफ्रु आं अ पुयतुनि फान्न बोसकाङो सुकांग्रो

ओंना मसूंग जागान किसी सौ वानसूंगी अमाय कैसा स्कूल जेथनी चराय रगबो फायो सिकला रगबो फायो उमर चाखरारगबो एडमिशन नाओ जेथनी मूसाबो फीस करी कतर कतर बिल्डिंग करी मूसा क्लासरूम बो करी जतनी साय खातुमा कगंखा अरनी क्लास उंगो तैमा कसारो किसी सौ अब कथमया अब कैसा कुबुई चाहतुमसी केरालानी आलोबायानी साजी वालास श्रेलजी अमाहनो कैसा स्विमिंग क्लाब खलोगुई तंखा ताबुसु जरा सीबा सैनी गबां लुखुरक अर तुई यकना सरंखा साजी जी दिबां सराय रखनोबो तुई यकनानी फरंखा अशाक्तर मंगनी उक्लोगो कैसा खा साजाकनाय ककबो हुजाक तंगो किसा बिसी सकां रंखुंचा फिलजागै रों सरंनाय रक थैका आपातिमं साजी जिनो खानक गलैसारेखा बवानसुका तुमं चराय रक तैयकना रंखे गबामा चराय रखनो लांगमा आरि गाला खामु आरोनि सिमिनो चेंखा बिनि अ तांगबतां किसिंसं साजी वाला सेरेल जिनी लांगमा चंगनो कैसा कथक फोरोंमंग्रो बयनो चबानानि बागै गबामा रां पैसा नांगिया नांगो कैसा खाबाय साक्थार मुंताय खारवै चायतमं अवानसुमं रत्न तयि खरकसा बरक साय साय लुकरंनि लाखमानो सेलाय मानो आनि खापांनि हाखतनि लुकरक थांनाय किसासोग सालो आं इउरोपनि नेदारलेनो बेरायनानि सेब मानखा आं गोबांमा मिटिंगो मानजाखा आं बेरायमानि जराव' अमहाय कायसा जरा सकफायखा अब भारतनि जत' लुकरकनो खा बासारवो नेदारलेनो संसारजा कायसा पान्दाव' चुलमलनि गोसाम किसासो ताम्र रिपिनो भारतनि यागो याफारि रोजागो अ पान्दाव' नेदारलेण्डनि मन्दिर बख्रबो टंमानि अ ताम्र रिपिनो तै हाकुतनि फाटा तै बिसिंग बाबायनि थायनि सिमिनो आं जयावै गोबांमा कक्तमा मानखा लुकरक बरकनि खातुंमानि कक्नो साका तै बायथांनि कंचुंमानि कक्नबो बलायखा हायुं गोनाङै जुदा जुदा थायो तंनाय तामिल बसंनि लुकरकनि बिसिंगबो अ पाटिमुंनतै बेलायखनो खा बासाजाक तै तंथगलायजाक किसिंसं अ ताम्र लिपिनतै लुकरकनि बिसिंग किसासुक सोंमुं आजायखा अबनि बागै आं तिनि अबबाय गोरोंजा किसासुक ककनो नरकनो सानानि मुसंग आरो कायनै चिसा कतर तै कायथाम चिकन तामानि तंला तंगो अब आलायदाखे बबगरा राजेन्द्र चोल पुइला बायबिनि बुफा बबागरा राज राजा चोलनि कायसा ककनो नारकनानि ककबाय गोरोंजाक जालायसं अ ताम्र लिपिनतै लुकरंनि बिसिंग किसासुक सोंमुं आसायखा आबनि बागै आं तिनि अबबाय गोरोंजाक किसासुक ककनो नरकनो सानानि मोसंग अर कायनै चिसा कतर तै कायथाम चिकन तामानि हायकबा ताम्र लिपि तंग अब आलायदाखे बबागरा राजेन्द्र चोल पुइलाबाय बिनि बुफा बबागरा राजा राजा चोलनि कायसा ककनो नारकनानि ककबाय गोरोंजाक आरो एनि मंगलम कामिव' कायसा बुद्ध बिहार याफारमानि कक खुरसाजाक तंग अ ताम्र लिपिव' चोल बसंनि सुखसामुंनि ककबो साजाकमानि नुगो अबबाय सायमानो चोल बसंनि हालकनि तमंबो अबनि बिसिंतै सायमानो चोल बसंनि खनमपुइ लाइबुमा ताई

जेनु खुंग तुनो तु सालब्रुम न चबा खलना नागो बरक नि बगे बेलै कहम उंगसुखा किसी संग थाना तलो आं कैसा कक कहम के सैमान खा अब मन की बद बैब ग्रंजाक अब नि बगे तीन आं नरक बैब शेर खालायन तमिलनाडु नागेर कोयल खरकसा टीचार बै आं मालायखा आं बो बै बीसी थापी सकान मालाय मानी आं कक सै दंग गिरिजा आम मानी।

नागेर कोयलो खरकसा टीचार बै आं मालायखा आंबो बै बिसि थाबसि सकां मालाय मानी आं कक साय दंगो गिरिजा आमानी आंबो बै मालायफुरु किसासो सिख्ला रबो बिनि लगि तंमानी किचिंग सं गिरिजा आम्माजी कायचिबासो रोंनक चालुगै दंगो अबनि बिसिं चेन्नाइनि जय गोपाल गुरुदिया हिंदू विद्यालय कैसा तंगो बिनी हानु हामजाक मानी सामूबाई हाक्तनी लुकुरक खा बासाओ ब मन की बात बिशंगी खा बासाओ हाक्तन सेंक्रा ग्रकनी बगे सामू तंगनानी खाचंगो अबनी बगे बिनी बेबा रंगनगनी सरंगनाय रकनो खातुंग रखा ब चेराय रकनो साका हाक्तनी फान गनां सेंक्रा ग्रकनी बगे सालो रां खक्सा याफारनानी बिसव जत सोरोंनाय रकनी बखाती खक थामरा दक्षिबा रां जमक जाखनाय अ किसा किसाखे याफारमा बाय 40 लाख रां जमका गिरिजा आमा अ रांनि चेक आनो याफारखा ब बाय कक सालाय आं सायमानखा आमा भारतनि बागै बिनि याफारमुं बेलाय कतर थानाय बिसिव चेन्नाइनि पुइला हिंदू विद्यालया बिसिबाचि पुंमानी हाक्तनि रोंतै हुकुमु मुकुमुनि बरमनो बोसखांग आगुग्रुइ तंग अ रोंनक नेटवर्कनि सामुं बेलायखे बलायजाखनाय आं अ सामुं बाय गोदालजाक जत लुकरकनो बेलायखे खाका हाम याफारो ताय सोरोंनाय रकनबो हामजाखमु याफारो जेबरक फान गनां सेंक्रा रंनि बागै याफारमानी किचिं सं भारतनि बेबाग कामिरगो मुंसाया मुंसा ओङै दंगो अब जोंनो खाबासारु गोबांमा अमहाय चायतु मुं रकनि कग्रब सालायजागिया फियाचों अमरकनि कक सायमांखि चिनि पुइतुक्राग ओंगो जे हाक्तर बायथांनि लुकरकनि फान बाय बोसखां आगुगुइ दंगो आं नरकनो कयजाओ नरकनि गानागिनि अमहाय चायतु मुं रकनो नायजादि जे बररक हदानि बागै काहाम सामुं ख्लाय दंगो बरकनो सिनिदि बरकनो बरमरदि बरकनि थानि सोरोंदि मानखेबा नरबो साक साकनो आ सामुं बाय गोदालरदि फायनाय ताल मनकि बातो गुबुन खा बासा जोंनाय ककतुइ हायनो हायनो रगबाय गोरोंनाय बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमखा।